0: कुलास तुम कुफा भी
1: ती हमने रसोम नी इसा तब कलू ते मंदीकेल ते तब का ते मंदीकेल तब का ते मंदीकेल ने वाले फितु लपन द कानो रन चमा इता फाउला ने मिचा वचले जीर का पोका रन सारे नाम ले उल इसा ना लाव सो ओजो हम कॉम्प्लेक्स सो फिला आरम बे फमिसा सहुता का मिचो यात का पोका वो ते सामे फाउला ने ताल बे फितु लपन द कानो सो वे अमान ले तेले स्टार्स पति मान ले वे जीरामान तो कोनी अपिन पिच हेसन तार ने यम गुलाना amin'ny amahanan'le olana retirestage fa ijiro kapoka ve nyfahaolana tokony mandinika mihitsy ho malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsosy hoe deradera hoe manao manasoa vahoaka zay fanomezana tolo jiro to fa tokony tonga saina le malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve nitandry zareo amahanany olona ny jirama amin'izao hoe
0: Sauta tumkula, sauta tumkuvav.